से गिरी एक छोटी सी बूंद जब समंदर में समा जाती है तो क्या आप उस बूंद को फिर से ढूंढ सकते हैं? सोकत हेरी जाए, भला उसे कैसे खोजा जा सकता है? अब वह बूंद बूंद नहीं रही, वह तो खुद समंदर हो गई है। दोस्तों, हमारी हालत भी उस बूंद जैसी ही है। हम खुद को परमात्मा से अलग मानकर एक छोटी सी बूंद बन बैठे हैं। हमारा डर, हमारा अहंकार हमें समंदर होने से रोकता है। लेकिन जिस दिन प्रेम की गहराई में उतरकर यह बूंद समंदर में गिरती हैं, उस दिन सारा संघर्ष, सारी खोज खत्म हो जाती हैं। अब न कोई खोजने वाला बचा है और न कोई खोज, बस समंदर ही समंदर रह गया है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा सोचिए, क्या हम उस परमात्मा को पा लेना चाहते हैं या हम खुद परमात्मा हो जाना चाहते हैं? पाने में हमेशा एक दूरी बनी रहती है, लेकिन हो जाने में कोई दूरी नहीं होती। हम अपने अस्तित्व को बचाकर ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। आज कोशिश कीजिए अपनी छोटी से छोटी पहचानों को, अपनी छोटी छोटी पकड़ को छोड़ने की। जब आप अपनी बूंद जैसी मैं को त्याग देंगे, तभी आप समंदर जैसे विराट अनुभव को पा सकेंगे। याद रखिए, जब तक आप हैं तब तक वो नहीं हैं, और जब वो हैं तब आप नहीं हैं। इसी खो जाने में असली मिलना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: जारे थारे नाले में जाके तुम धोके आका लारे गारे गारे गारे गारे
1: सूर बदल
0: गारे गारे
1: हमको बटा
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह दिए ये सूर इन आया है दो
2: ये कचा तुर नार हम छोड़ेगा नहीं।

एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मर

0: शायद तू क्या कर रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

0: गोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

अगर तुम ना होते। संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलशन बावरे। हमें और जीने की चाहत ना होती।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ूं?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझूं?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ ना।

0: एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: हाय मी आरजी स्वरा आपण ट्यून केले रेडियो मन भवन 90.8 एफएम ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: ही है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: सच है क्या? सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: जमाना, एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का, जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
3: गाड़ी चलाओ।

0: ट्यून इन एनी वेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो मैं बुला दूं।

देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी। देते हैं हसीनों को सलामी, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: प्रिया तो कीजिए साहब, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो मन भावन 90.8 FM, always had touchy.
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा

आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहाना।

बचाना मेरे हाथों से, अरमां के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमां के गले से लग जाना, जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना देख।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे।

के न रुक रुक जाना, चाहत कलबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना।